0: नमस्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम में राकेश माथुर आज आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम समर्पित है युद्ध और शांति को लेकर के। ये जो सप्ताह है वो रिमेम्बरेंस वीक है, रिमेम्बरेंस डे 11 नवंबर को मनाया जाता है यहाँ पर। तो रविवार को जो है महारानी जी ने जो है फूल चढ़ाए थे और सोमवार को 11 नवंबर को बहुत धूमधाम से जो है व्हाइट हॉल को बंद करके पॉपीज चढ़ाई गई थी उसमें उन सेनानियों के लिए जिन्होंने लड़ाइयों में काफ़ी अपनी जीवन की आहुति दी। तो हमारी जो है, आपने तो बहुत सुना होगा जिन लोगों ने आहुति दी है पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में और अब अफगानिस्तान में, और काफ़ी मरमान तक जो है ये माहौल था जब हम गए थे देखने के लिए। भीड़ भड़क का लोग जो है, सेनानी लोग जो है अपने यूनिफॉर्म में थे। तो लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि बहुत दुखी थे, उन्हें कोई खुशी नहीं थी इस बात को लेकर के सेलिब्रेट करने के लिए रिमेम्बरेंस डे। उनमें से एक है नेपाली गोरखा ज्ञान राय, जो कि सेना में काम करते थे और आजकल वो भूख हड़ताल कर रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने। तो हमारी उनसे बातचीत हुई इस सिलसिले को लेकर के, रिमेम्बरेंस डे को लेकर के। चलिए उनसे बातचीत के अंश सुनते हैं। ज्ञान राय,
1: मेरे नाम ज्ञानराज राय है। मैंने 20 इयर्स ब्रिटिश आर्मी में सर्विस किया था। आफ्टर रिटायरमेंट आई एम कैंपेनिंग फॉर इक्वल राइट्स, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग। दे आर बुलिंग द पोर कंट्री लाइक माई कंट्री नेपाल। इवन दो नेपालीज गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टिंग मेनी टाइम, they are bullying us. And
2: what are the problems you are facing, specific problems?
1: The main problem is the old and frail and poor people who have come over here. They can't speak English and they can't go to the GP, they can't take the medicine in time. If they got any problem, they don't have any helper or carer, you know. They are really suffering horrendous time, and they are just coming over here to claim some benefit. If they stay,
2: who is claiming?
1: The old veterans like me, but they are senior citizen over 60 years of age, you know. They can only come over here to claim some benefit so that they can send back to look after their dependent family in Nepal.
2: So you don't get the equal rights like other
1: seniors. Exactly.
2: And you sacrifice for this country.
1: Yeah.
2: How many years did you devote?
1: I did only 20 years.
2: 20 years.
1: Yeah.
2: It's a long time.
1: Yeah.
2: So you were posted in a lot of other countries.
1: Yeah, I served in Hong Kong, Brunei, Canada, and the UK, and Nepal as well. In Nepal, we have a depot as well.
2: Okay, what do you think about today? The whole ceremony, they had a big ceremony here, Remembrance Day.
1: I don't know what they are, doing the ceremony actually. And in fact, if they respect their ancestors, they should be respecting, practically giving their rights, looking after their family, you know. But that is just the drama, you know. That's what I feel.
2: Yes, and you feel sad about it because they are spending so much money on all these kind of pretensions.
1: Exactly, exactly.
2: And they don't give you what is right for you.
1: Exactly. Actually, I must say, they killed many, many veteran and their family before they should die, you know, because they could not eat good food. They could not get treatment or medicine in when they need it. They could not educate their children. Aapka malum hai na, all Bahadur logo ke son and daughters, they are working in India, Saudi Arabia, Qatar, where, and Malaysia.
2: हाँ, लेकिन आपको शिकायतें बरतानी सरकार से है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपको शिकायतें हैं?
1: We have been campaigning for last 15 years. And they are not listening, so we are compelled. उसने काफी किया था, मैंने किया था, where she only did manage to give us settlement right only, but even on that, she could not do for adult children who are not married, so they could come over here.
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: तो ये थे गुरखा महोदय, जिनको काफ़ी शिकायतें थी कि सेना में उन्होंने 20 साल जो है अर्पित किए और उनको जो है संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो वैसे हालांकि उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है नए लोगों को ज़्यादातर खास तौर पे। खैर, आज के कार्यक्रम में युद्ध के प्रति तो है हमारी कोई संवेदना नहीं, हम जाहिर करेंगे, क्योंकि हमें जो वक्ता मिले हैं वो सब उन्होंने देखा है कि इस युद्ध के कि कितने जो हैं भी बुरे बुरे हालात जो हैं लोगों को महसूस करने पड़े हैं। तो हम आपकी बातचीत जल्दी ही करवाएंगे एक और जनाब से, वो इटालवी हैं गब्रियले काश, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है किडनैप की। उनको अफ़गानिस्तान में अपहरण किया गया था, वो तस्वीरें खींचा करते थे, तो उनकी पुस्तक अभी शाया हुई है, तो उसके बारे में हम उससे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ संगीत सुनाते हैं, म्यूज़िक।

0: तो अभी आपने चर्चा सुनी थी गब्रिएले काश से, जिनकी पुस्तक जो है एप्पल स्टोर में अब उपलब्ध है, अगर मौका लगे तो ज़रूर आप देखिएगा। और कल हमने रात को एक बढ़िया फिल्म देखी थी, रेलवे मैन, जो कि 1 जनवरी को उसका प्रदर्शन किया जाएगा, उसमें निकोल किडमन है और कॉलिन फर्थ। वो भी युद्ध को लेकर के है कि पिछले महायुद्ध में जब सिंगापुर से है अंग्रेज़ों को जब अपहरण किया था जापानियों ने, और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया था रेल बनवाने में, रेलगाड़ी बनवाने में बर्मा में गुआई रिवर के नज़दीक, तो क्या क्या जो है उनको उनके साथ यातना की गई थी, उसके बारे में फिल्म है जो कि बहुत अच्छी है और हो सकता है उसको ऑस्कर भी मिले। लेकिन वो फिल्म जो है अभी उसको रिलीज़ होने में काफ़ी वक्त है, नए साल में रिलीज़ होगी इंग्लैंड में, तो मौका लगे तो देखेगा। खैर बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे अल जज़ीरा के कॉन्फ्रेंस की, जो हमने आज हम गए थे वहाँ पर, और वो पत्रकारों को लेकर के है कि पत्रकार लोगों को जो है किस तरह से युद्ध के दौरान जो है पकड़ा जाता है, आज़ादी नहीं दी जाती है, ख़ास तौर पर मिश्र में और मध्य पूर्व जो है एशिया में देशों में। तो हमारी बातचीत हुई अल जज़ीरा के जनाब से जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है ये, तो पहले उनसे हम बातचीत सुनते हैं, फिर आगे हम आगे बात करेंगे।
1: Yes. Okay. I'll ask your name, please.
2: My name is Ghassan Abu Hussein. I'm the manager of international relations and communications with Al Jazeera Media Network.
1: And you are hosting this brilliant conference today. Please tell us something about this conference, how the idea came and why. What do you want to achieve through it?
2: Okay, actually the idea behind this conference is that as Al Jazeera Media Network and the other colleagues who are working in the same career in the media, since the coup has happened more than around now, we are talking about 4 months ago, there have been incitement campaign against Al Jazeera and everybody as a journalist who are working to reflect the both sides of the story, the both angles. And as Al Jazeera, we suffered from that time. I can give you numbers, for example, 47 of our colleagues from Al Jazeera Arabic, English, Al Jazeera Mubasher, Mubasher Masr, have been detained and arrested either for a few hours or a few days, and some of them till now for almost more than 110 days, almost 4 months, without any charge, without any accusation. Actually, one of them, he's a cameraman, his name Muhammad Badr, and the other, he's a reporter, his name Abdullah Shami. Muhammad Badr, he was accused that he have a camera. And you can see
1: which
2: beside,
1: they
2: are Egyptian,
1: okay.
2: And this is in Egypt, yeah, okay. Since the coup was happened in Egypt 4 months ago. The other issue that beside this detonation, Al Jazeera signal was jammed. In 2 months, more than 167 times it have been jammed by the Egyptian authorities, the interim government. Beside this, also our crews, sometimes they have been punished, and some of the gangs or thugs or baltajia, they call them there, they have been follow them. Our offices there also have been either closed, or they bought some of the things in front of these.
1: When was it done? How many months ago?
2: This is since the coup has happened, which is the first of